आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला पिंडनाल। उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर। जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए। उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो। उजाला रेडियो आपके साथ।

उजाला रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर उजाला रेडियो।

0: रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो मुझे नींद नहीं आती थी।
2: मुझे भी नहीं आती।
0: मुझे भूख नहीं लगती थी।
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है।
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा।
2: मारिया!
0: रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना, क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है, और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
0: नहीं!
3: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
2: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो यो, तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
5: अच्छा?
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे!
4: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम भटके हुए प्राणियों को राह

Hoe meer je ze hoort, hoe beter ze klinken. Origineel hier op de draaitafel deze uit de film Dhamki Kagana Hamne Aapko Sunaye. Way back de jaren 70. Is wacht de hotte hoigel. Saat beginnen met 11 minuten. 11 minuten voor 7. Ik heb Mohammed Rafi van je On the Beat of Madan Mohan. Met het onsterfelijke lied uit de film Jiska Naam He. Nou niet haal. एक बहुत अच्छा गाना हम आपको सुनाएंगे आपकी आंखें ना भर जाए वो कह दे अलमाल के खनुख फान ऐसे मौसम में सुबह के वक्त जब घाम निकसर है दिन होते होते तो हो जाते हैं दिल को खुश कर देते हैं दिमाग को कहीं और ले जाते हैं आपका म्यूजिकल दिल सुन गाना ही आओ वाओ

फिर से लगा आपको उजाला का मजा द बेस्ट ऑक्टन शो ऑफ द हिंदुस्तान सरारियो हीर अनलेन हीर ऑफ तिरंगी सात बजे ने में सात मिनट बाकी सेफ म्यूजिकल मिनट इन फॉर सेफ जो मेटेन कमिंग अप विद न्यूज़ ऑन द आवर एंड लिस्टर अंदाज़तक मिस्की नोरी ओक फंडी बिलंगरेक आइटम्स इन द न्यूज़ बाकी जो समाचार है मस्ती है आज उजाला का मजा में सात बजे के बाद मेरे जरिए जरूर सुनते रहना मेरे यार जस्ट heeft Anjaan ook een van die tekstschrijvers in de muziekindustrie van Bollywood een prachtige soundtrack geschreven voor Sangeet Ki Devi en Mohammed Rafi. On the Beat of G.S. Kohli, the original soundtrack, The Adventures of Robin Hood, namelijk film mee, waarin we hem aan het zingen. Jawa, jawa, hoesneke.

सजन रे। हम सोचिला आज के लिए जो अवल बातें पते की बातें नहले पे दहले की चीज था हमने आपको सुनाए समझाए और बताए थे नहीं रहा बल्कि जो अवल बातें पते की बातें रहा मैंने आपको समझा दिया सुना दिया और बता दिया। Het is inmiddels geworden 4 minuten voor 9. Morgenochtend zit ze in haar boot AJ met Good Day with AJ. Iedereen allemaal rest mij u nog een sunshine dag dien toe te wensen. Let goed op jezelf en all the best. Ik groet u met een prachtig lied. Jenna Bailey van Sitje Tinden en Ene Saj Het. Met Amitabh Bhattacharya komt uit de film War 2. Je hoort Jenna Bailey.

और गीत आप सुने फिल्म ब्रह्मचारी का मारदानु सनम, हाँ सनम के जरिए। एंड सुनने वालों अब उजाला रेडियो पर मोहम्मद रफी साहब फिल्म वारिस का गीत को लेकर के

चंद एक बेशारा प्यार का मारा। मोहम्मद रफी साहब से आप गीत को सुने, फिल्म वारिस से निकाला हुआ मोई गाना तो या मार। अब सुनिए एक और मोई गाना पेश है एंड हुक मोहम्मद रफी मडन लता जी के साथ। उजाला रेडियो है ये, तू जाने है तो

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनने वालों। चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। हमारे प्यारे शिनमलो, हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 3 9 9 7 पर आप लोग तार कर सके हैं हर एक काम काज के लिए, या तो हमारे वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा।

0: वेल वेल, तुम न जानो किस जहां में आप खो गए। उस तरह से लता जी के आवाज उसमें गाना जी प्रोग्राम में भी आप लोग सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: कुछ पुरानी कुछ नई। मुकेश भैया का हृदय कितना विशाल था, कितना प्रेम था उन्हें अपनी छोटी बहन से। एक दिन अमेरिका में कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो बोले,
2: हम तो आज भी हर रोज की तरह, हमेशा की तरह उसी गाने से ये महफिल शुरू करेंगे। होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मगर इससे पहले, जिस देश में गंगा बहती है उसकी एक तहजीब है, और वो ये है कि जहां लता मंगेशकर जैसा महान कलाकार परफॉर्म कर गया हो, उस स्टेज पर किसी दूसरे कलाकार को कभी आना नहीं चाहिए। मगर उन्होंने बड़ा भाई बना के मेरे ऊपर इतना जुल्म कर रखा है कि हर एक किस्म की बदतमीजी मुझे इजाज़त दे रखी है।
3: भैया और बहनों, मुकेश भैया प्यार में ना जाने मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर जाते हैं, हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ। मैं शायद इस तरफ गाने के लिए कभी नहीं आती अगर मुकेश भैया नहीं लाते तो। ये एक साल मेरे पीछे पड़े रहे और जिद करके मुझे यहाँ ले आए। मुकेश भैया, मैं आपके बहुत आभारी हूँ। मुकेश भैया मेरे बड़े भाई हैं और मैं हमेशा उनसे आशीर्वाद चाहती हूँ, तारीफ नहीं।
2: लीजिए, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है,

राहुल होटो पे सच्चाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती है। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे, हमारे प्यारे सुनने लता खांसकर के लता के कुछ डायलॉग आप लोग सुने, और मुकेश जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुन रहे थे। यू आर उजाला रेडियो है।

लत और मुकेश जी के आवाज उसमें गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने अल्लाह जाने क्या होगा आगे। उजाला रेडियो का प्रोग्राम हमारे प्यारे सुनेमलू और हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन में 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक।

दिल की नजर से कोई हमें बता दे वेल कितना मोई कितना विशाल लता एंड मुकेश जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यार, दिल की नजर से तो हर एक बात होता है। एक मंजिल राही दो यार।

राहुल एक मंजिल राही दो और फिर प्यार कैसे ना हो, इस तरह से लता एंड मुकेश जी। यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

राहुल, अरे यार सैया छोड़ दे, और इस तरह से मुकेश जी एंड लता जी बोले तेरा हाथ ना छोड़ू, तेरा साथ ना छोड़ू, बोले तू कहाँ जाएगी। राहुल कितना विशाल, कितना मोय।

वेल यार, नजर नजर से बात हो रही है प्यार की, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और वो भी खास करके लता और मुकेश जी के आवाज में, उजाला रेडियो का प्रोग्राम।

ले गोरा कागज था मन मेरा। उस तरह से लता एंड किशोर कुमार की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और हमारे प्यार सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे, चाहे जहां पर प्रोग्राम को आप लोग सुनते होंगे वहां तक हम आप सभी को प्यार से दुलार से दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं अपने ही प्रोग्राम में।

वेल यार, देखा देखा एक खाप तो सिलसिले हुए अवसरों से लता एंड किशोर कुमार। एंड यू आर उजाला रेडियो का

साल बल यार मोहब्बत बड़े काम के चीज है। आयुषर से लता किशोर एंड येसुदास जी के आवास उजाला रेडियो का प्रोग्राम वेल परदेसिया परदेसिया। यू आर उजाला रेडियो।

ओहो परदेसिया, लोग कहते हैं मैंने दिल तुझको दे दिया। आओ इस तरह से लता एंड किशोर कुमार के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, और वो भी फिल्म का नाम मिस्टर नटवरलाल। स्टेशन है उजाला रेडियो, और हमारा दफ्तर का फोन का नंबर 03 9907।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

मौसम मस्ताना और रास्ता अनजाना। आशा जी एंड दिलराज कौर से आप सुने फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता, सत्ते पे सत्ता, और ये है उजाला रेडियो।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो यहीं कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दोराहा भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

चला रेडियो सुनो लो और घड़ी की तरफ देखा जाए तो अब वक्त हो गया है वही प्रोग्राम पेश करने के लिए और वो भी एक प्रोग्राम का नाम कॉफी चाय और मिदक शो आपके वास्ते। हॉरोस्कोप तो शुरू हो गया था मैं द हेरहालिंग फ्रॉम द हॉरोस्कोप कोम्ट ना एन यूर एक्सक्यूज दैट द हेरहालिंग फ्रॉम द हॉरोस्कोप कोम्ट ना एन यूर यही से शुरू किया जाता है प्रोग्राम कॉफी चाय मिदक शो आपके वास्ते। वेलकम ऑल माउ ऑफ दिस प्रachtige donderdag 7 mei।

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलम तू जाने तो।

उजाला रेडियो आपकी आवाज आपके गीत और संगीत आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो पूरा हॉलैंड में डीएबी प्लस पर और दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए उजाला.nl।

बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुनवालो तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खयाई बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

जाना रेडियो सुनो लो और घड़ी की तरफ देखा जाए तो अब वक्त हो गया है वही प्रोग्राम पेश करने के लिए और वो भी एक प्रोग्राम का नाम कॉफी चाय और मिदख शो आपके वास्ते यही से शुरू किया जाता है प्रोग्राम कॉफी चाय मिदख शो आपके वास्ते वेलकम ऑल माउ ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोग्राम कॉफी चाय मिदख शो आपके वास्ते वेलकम ऑल माउ ऑफ दिस प्रोग्राम डोंडा 7 मई

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

के मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, ना मुझे एसएमएस का लगा, रही ना किसी काम धाम की, जब से लड़की को चस्का लगा।

0: कोई दिखाई ना करेगा यहाँ पे, हम आ गए।
1: ओके तू आ गए, दैट इज द ब्लंगरेक्स है, जो तू आ जाएगा तब है, तब
0: नूर आ गया है, मैं आ गया हूँ, नूर आ गया है,
1: तो माहौल भी धीरे फरांदर हो जाए, तो
0: धीरे खुशी खुशी, हमेशा खुशी खुशी
1: है।
0: दोस्त कोई कोई आदमी हैगा जो हमेशा डिप्रेसिव रहेगा, हमेशा कुछ क्लाक करेगा, एक साथ लिफर पॉजिटिव है ना,
1: मुतवाल तो नहीं तो कैसे दिन में कटेगा, दिन में ना कटेगा अंदर,
0: नो यही लाइफ कैसे कटेगा, यही लाइफ वर्ड्सवार, हर कदम में तो कह जनाएगा कि बहुत हेवी है
1: यार,
0: तगल अशिदर पॉजिटिव हंसता
1: दन, या
0: दन द्राखियत खबून, आओ कौन ची हमें दिए है, लाओ एक द्राखत वेल
1: हां toch
0: je moet het dragen, je moet durven te dragen,
1: je moet het inderdaad dragen en dan ja nou ja ja nou
0: John Lewick के बालों, John Lewick
1: के, John Lewick है तू ले
0: ले, ले खुशी खुशी, ये क्यों नहीं सेखा हम ना ले बे, चाहे वो मन दुख है चाहे सुख है, हर एक इंसान के लाइफ में तो अच्छा चीज होवेगा, खराब चीज होवेगा, दुख रहेगा, सुख रहेगा, ये क्यों नहीं सका खाली, यस ये क्यों नहीं सका हम खाली सुख मांगीला, खात नीड लोग भैया,
1: दैट कैन नॉट बी तो, दैट कैन नॉट बी,
0: चाहे तू राजा बाते चाहे तू प्रजा बाते, हां दोनों तोर पास आएगा कभी ना, एक एक ना एक दिन तो के दुख भी पड़ेगा, देख एगो राजा के दुख ना है शायद पैसा के, अंदर पैसा कमी हो में ना बा, मां एगो एगो खसोंत है इसके दुख वेल है, ओके हो सकेगा यार, हर एक इंसान के पकड़ सके कुछ,
1: कोई बीमारी कुछ नहीं है
0: दोस्तों, ना सोचिए कि राजा के को दुख ना बा, राजा के पास भी दुख है यार,
1: है
0: दोस्त, हम लोग के दुख जोन हैगा खुशी खुशी हम लोग सह ले जा, मोई बहुत खप ना दोन, हम लोग बंद कर दीजिए परफॉर्म
1: डायरेक्ट डायरेक्ट,
0: हां एक फिर दैट वेल गनोग फॉर फॉर
1: और कौन सी बोले के और कुछ ना बोले के, क्लास डोन
0: नया जीवन में जोन ची होवेगा तू सह ले,
1: हम जस्ट आइले तो लेती है, हम जगीला सवेरे एक बैन हेल मफ्रोलो की, चाहे जोन चाहे जोन या प्रॉब्लम है और वादन ook, चाहे जोन ये गाट गोन दोर
0: दोस, het grootste probleem is als je zelf medelijden krijgt, जोन en मी ऐसे है या, sommige mensen zitten echt zo in elkaar hoor, dat ze zoveel zelfmedelijden hebben, कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम हुआ, हमारे ऊपर वो प्रॉब्लम, अरे यार भैया एक चीज तो समझ, तो तू अकेले ना बाते दुनिया में जकर ऊपर प्रॉब्लम बा,
1: मांग
0: है दोस्त, सब कोई के ऊपर कभी ना कभी प्रॉब्लम पटे पड़ेगा, मैं ओक मैन से है लोहित, हमें को बात बोले ढेर गुस्सा जाएगा, मैं मांग मैं नहीं ओहित वैसे प्रीत पांगी
1: डायरेक्ट जो कि बोल के बोल रहे डायरेक्ट,
0: दोस्त धल्ले तोर माई या बाप या कोई भी धल्ले होइगे 90 यार, 95 दिख बाई दंड्रेड, ओकर जब मृत्यु भल नतुलक तो के दुख रहेगा, नतुलक तो के है पीड़ा रहेगा कि तोर माय और तोर बाप अपना
1: है, तो
0: मां तो के चाहेगा भी उतना सहन शक्ति रहे के, तो कि तो के सह ले दुख, मन तोर माय बाप जो उतना लीफ ताई थाल करी से और काली है यार, इस तो खनूग
1: इस खनूग एन डेंग अन द हेरिनिंग जो हेरिनिंग छोड़ के गल हैगा डामे का ये दिस फेडर,
0: और सब कोई के एक ना एक दिन जाए के है,
1: वो तो है,
0: अगर तोर माय बाप ऊ लाइफ टाइम बराई करी से दतो के चाहे खुशी रहे के दमुच ब्लेस एंड दमुच एक्सेप्टेर एंड दमुच नीड स्टेज ब्लेफ सेख फन, या मैं हमें बहुत दुख बा, हमें बहुत दुख बा, हम समझी ला यार तो के दुख बा, मां हम हमू के तो बीतल बा उचे जुआ, लोहित के ऊपर भी बीतल बा, सब कोई के ऊपर बीतेगा फ्रूख ऑफ लात, अलीन तेस फेल पेन लेकर तू अबे तो के छोटा छोटा लड़कन बा, तो ऑफ ऑफ तू 50 बरिस के बातें फिर तक यार के बातें तो के हार्ट मार दे तो के कुछ हो गया और तू चल गए ले दैट फिन तक फील पेन लेकर लोइट,
1: हां वो तो है, वो तो है,
0: लेट से चीज वाली
1: आज शॉप यंग लेफ्ट कम टू ऑफ लेदर, या नन तब और दुख पर रहेगा,
0: वो बहुत ज्यादा दुख है यार वो लेफ्ट के मिज,
1: एक होप दैट आई द 80 हाल, 80 फिन इक ऑल मोर होर,
0: नो तो क्रूशियले लेफ्ट वा पास हो गेले बात है, देख बे मन बे मन हिंदुस्तान से मन
1: पीना पीना पीना पीना हम पास हो गेली,
0: हां एगो गेवाल्लिके लेफ्ट आई है बे हिंदुस्तान मन ओ
1: सो
0: रोंड 45 ongeveer कि हार्ट प्रॉब्लम ढेर रहेगा, दोस्त थोड़ा से बचाई के मन हिंदुस्तान से मन जोन 45 यार के बा ongeveer है थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा से अपन हार्ट तुरंत ख्याल करवाइए यार,
1: हार्ट वा के Je hebt het allemaal zelf in de hand. Hè? Heeft ook te maken met je leefstijl. Ooit is wel belangrijk, hè? Je leefstijl.
0: Nou ja, maar ook aanleg hoor, Lloyd. Ja. Leefstijl is natuurlijk belangrijk bij aanleg.

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।